0: अभी मतक के आदरणीय तनवाली पुरुष आदरणीय वेल नहीं तो तुंटे और ना आदर दोषी वासनावंत या हो वासनावंत ये और बट और ना वीमा है कि आवक्ति आई थिंक जाने बहुत मस्तूती में पैतरे अवस्था वाला बात उन्होंने
1: बहुत मस्तूती दर्शन में पैतरे विस्तार किया ना वटू

मिल गए आज आसमां से अदमट हस हम एट ही तेने मांग हसरा थोड़ा उड़ींकला एम दवास दिए ना हिते आदरे पुरोगत दवास हदा ये दवास वल्ट आदरे ही ना समार अंदरु काल गुने वसन हिते वेनम कलापयक वेंकरला तियागान तरंगक्का मट क्रश एकक इन्ना मां इतिन दुरे इंदन एया दिहा बलागेन इन्ना मन तरु तरुट गैलपेनम नम हम्बला तियन्ने क्रश एकक इन्ना ऐतिन इंदा एया दिहा बलागेन इन्ना ඉතින් ඔයා තරුවක් වෙලා ඉන්න ක්‍රෂක ආදරේ නම් එහෙමයි නැත්තං එහෙමයි ආදරේ කියන්නේ අයිතියම නෙවෙයිනේ නංගේ

जब तक जहां है सुबह शाम है जब तक मेरा नाम तू मैं टकावद वे नकाम दे हवस वेद रात्रि वेद ए वे न तुरमा गे नाम पे මේ ලෝකේ කවද වෙනකල් මගේ නම පවතී වේද? ඒ වෙනකල් මගේ නම

तेरे प्यार में पागल हूँ मैं। ओबे आदरें मामा उमा तो भी ये था जान माई लव यू यू लव मी आदरे ओया मत आदरे।